तेरे स्वागत ते लिख देने गीत कदी बैग बारे और शूज ऑन योर फीट मेनू कोई इंटरेस्ट नहीं है ना सब चीज आए केड़ा ब्रांड लिखे आ तेरी जीन आए चरों के कोई भी होवे जदो बंदे दा मन माया ना जुड़े जिन्ने भी लाख लाख दे कोल होवे होवे उनू लग देने थोड़े आ गॉट